तोरे भाई डोरी अम्मा एक बेनड़े की आलेगी क्या धरूड़े क्या परनाई रे अम्मा मिनो दिवे